सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम को बिहान 6:30 बजे खोज खबर में यहां स्वागत छ। खोज खबर ईश्वर साउत को नमस्कार। तपाई अहिले सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज का साथ ही अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रोमा पनि सुनिरहनु भएको छ। खोज खबर शुरू गरौं। खबर का मुख्य शीर्षकहरूबाट।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आत्मा त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
3: न्यू अछाम जालपडेवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर कैलाली संचालक ध्रुव सुनार।
4: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साडी सुट कुर्ती पलाजा र थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
5: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टीकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 9811638387।
6: हेलो बहिनी कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै सीजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी रूपान्ते 60 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ तिमीले कतिमा किन्यौ
5: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने
6: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै रु 25 क्लासिक चाउचाउ र 35 चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुस् है होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ आधिकारिक विक्रेता हरिलाल किराना पसल साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
5: हरिलाल किराना पसल ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट सम्पर्क नम्बर 9848404222।

0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका दिवस 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: रडगैया झोला उद्योग, मुनुवा रोड, टिकापुर, कैलाली। संचालक रामप्रसाद चौधरी।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालू खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: एघारह प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू,
2: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा, जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया,
1: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा,
2: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा, लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा,
1: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा,
2: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
1: दन्त रोग सेवा,
2: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा,
1: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
3: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार,
1: र सिटी स्कैन सेवा,
2: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू, एसडीयू, सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा,
1: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पारासिटोलॉजी, सेरोलॉजी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल वीडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पताल का अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
2: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा चौबीसै घंटा,
1: इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
2: हिंसा पीड़ित का लगी ओसीएमसी सेवा, मेडिको लीगल सेवा,
1: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंश को उपचार,
2: 12 लक्षित समूह निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
1: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीवी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
2: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासन को फोन नंबर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नंबर 97-62-48-35, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नंबर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
5: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
4: अब किन टाढा जानु, सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
5: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
4: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
5: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
4: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
5: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98-095-43-893। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
6: कार्यक्रम गोचाली अब से प्रत्येक हप्ता के शुक्रवार 10:15 बजे से करीब 11 बजे तक।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हमारो पात्रो नेपाली पात्रो मे सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाईती। थारू समुदाय अस्तिम की पर्व मनाईती। रसोमा बार पाछे बेपत्ता टीकापुर के 33 जना नागरिक अभिन के संपर्क में नई नई बेपत्ता परिवार हुकरण के आफन्ता हुकरण संगे हाली खोजी करे पर्ना माग। कैलाली में जापानीज इन्सेफेलाइटिस के संक्रमण पुष्टि हुई पाछे सरसफाई है तीव्रता। स्थानीय तह में स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर सरसफाई करती हो जमरा कुलवा के अध्यक्ष में मान बहादुर चौधरी निर्वाचित। वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हुकरा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर श्रीकृष्ण के पूजा आराधना करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाईती। बात ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग के प्रेरणाता भगवान श्रीकृष्ण के जन्म द्वापर युग में भाद्र कृष्ण अष्टमी के मध्यरात में हुई। आज के दिन है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हो रात है मोहरात्रि कहना चलन बा। ई दिन देशभरि कृष्ण मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के पूजा आराधना प्रवचन भजन कीर्तन करना के साथ ही विशेष करके महिला पुरुष व्रत बैठ के रात भर जागरण बैठना प्रचलन बा। अत्याचार और राक्षसी प्रकृति से समेत सबको मानवता के समेत रक्षा करना भगवान विष्णु के 8वां अवतार के रूप में जन्म लेहल श्रीकृष्ण के जीवन में सत्य के पक्ष में रह के सत्कर्म के लाग मानव समुदाय है प्रेरित करल रह। कुरुक्षेत्र में कौरव हुकरण के लड़ाई के संलग्नता में पांडव मध्य के अर्जुन हे उपादेश देना क्रम में जय श्री कृष्ण मुखार बिंदु समेत व्यक्त श्रीमद भागवत गीता पवित्र ग्रंथ में लिख गिलवा। छोटकरी में गीता नाम के समेत चिंजिना एक ग्रंथ विश्वभर नई सकुन से ढेर भाषा में अनुवाद करल विश्वास करल बा। रसोमा बार पाछे संपर्क विहीन रलक परिवार संपर्क समेत विहीन आफन्त हुकरण के हाली खोजी करे पर्ना माग करते काली इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर में ध्यानाकर्षण कराईदी वहां आपन संपर्क विहीन रहल आफन्त हुकरण हाली खोजी करे पर्ना माग करल बाट। ध्यानाकर्षण क्रम में बोल्टी टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 शक्ति नगर के यशोदा चौधरी आपन थरुआ के बेपत्ता हुनक एक हफ्ता बीत सकल से फिर खोजी कार्य नई हुलक में दुख व्यक्त करती बेपत्ता के हाली खोजी करे पर्ना कहल बाट। एकतापुर शिविर के शांति थारू फे आपन थरुआ के फिर रसुआमा बार पाच संपर्क विहीन रलक और से हाली खोजी कार्य पर्ना हो अब नहीं खोजी नहीं हुई न यहां सरकार वाला हुकरण के कमजोरी रहल बटोले बाट। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में बोल्टी इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर के प्रमुख तारानाथ पनेरू ई दुखद घटना में हुईलक संपर्क विहीन के खोजी गला प्रशासन की ओर से फे पहल हुई रहल बटोले बाट। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में टीकापुर स्थित राधा कृष्ण मंदिर टीकापुर 1 ब्लॉक नंबर 9 में जन्माष्टमी विशेष तथा शांति दीप प्रज्वलन कार्यक्रम हुईलबा। जन्माष्टमी के अवसर में बिहान 7 बजे से लेकर कार्यक्रम हुईलक हो। जन्माष्टमी के अवसर में भजन कीर्तन प्रवचन सत्संग लगायत के कार्यक्रम हुईलक हो। मंदिर में सांझ के 5 बजे शांति दीप प्रज्वलन फिर हुई नबा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो
2: बेला भाग जाता बंदे अब जो था पाव दे चु सब समा बनी घर में सकी न सकी सब काम करनु पर तो गाड़ो उनसा अपनी काम करने विदेश जानु आजा के करने के न करने के लिए था जाए ना तो जन्म पड़े जैसे लाचा
1: जिस तो रामरो पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह करे रा अपनो वर्तमान र भविष्य दुबे अन्योल में पारी 20 वर्ष मुनि हमी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरो।
3: जानकी गांव पालिका 9 नंबर वड़ा कार्यालय द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
6: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा 1 नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छड्के तिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
7: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली। संचालक देव बहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। कैलाली जिल्लामा 8 जनामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको संक्रमण पुष्टि हुल पाछे सरसफाई तीव्रता दैगिल्बा जिल्ला के लम्की चोहा नगरपालिका 2, लम्की चोहा नगरपालिकामा 2 जहान, घोडाघोडी नगरपालिका हो धनगढ़ी उपमहानगरपालिकामा 3 जहान गर्के 8 जहानमा संक्रमण पुष्टि हुल पाछे कैलालीमा सरसफाई तीव्रता देहल बताइगिल्बा। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीकी सूचना अधिकारी मेन भारत धामी जानकारी कार्यालयबाट जापानिज इन्सेफ्लाइटिस घोडाघोडी नगरपालिका 2 समेत घोडाघोडी नगरपालिकामा 2 जहानके माउट हुल समेत जानकारी दिलबाट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 और 9 3 जहानमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस संक्रमण पुष्टि हुल बा। संक्रमण पुष्टि हुल पाछे 2 जहानके माउट हुल पाछे वहाँ फे सरसफाई हे जोड़ दैगिल। घोडाघोडी नगरपालिकाके स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कौशल कुमार रावत जानकारी दिलबाट लम्की चोहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 और 4 2 जहानमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस पुष्टि हुल बा। 2 जहानमा संक्रमण पुष्टि हुल पाछे लम्की चोहा नगरपालिका फे सरसफाई अभियानमा जुटल बा। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस के टोकाई से सर्ना रोग जानकी गाउँपालिकामा फे समुदायमा लामखुट्टे लार्भा खोज नष्ट गर्न अभियान चलल बताइगिल बा। टिकापुर नगरपालिकामा फे जिल्लाके 8 जहानमा समेत जापानिज इन्सेफ्लाइटिस के संक्रमण पुष्टि हुल पाछे सरसफाई प्राथमिकता देहल बा। जमरा शाखा सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष में मान बहादुर चौधरी निर्वाचित हुईबाट कालेखोल निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिद्वंदी अमर बहादुर चौधरी पराजित करती मान बहादुर चौधरी निर्वाचित हुई लेखो अस्त के उपाध्यक्ष में तुल बहादुर शाह निर्वाचित हुई बाट प्रतिद्वंदी वीर बहादुर घरती है पराजित करती तुल बहादुर शाह उपाध्यक्ष में निर्वाचित हुई लेखो सचिव महिरा देवी चौधरी है पराजित करती भूपेन्द्र पुनमगर विजय हुई बाट अवसर के सहसचिव में एम नारायण शर्मा हेफे पराजित करती तेज बहादुर चौधरी विजय हुई बाट निर्वाचन समिति के सदस्य दामोदर खड़का जानकारी करे खोई। खोजखबर में फेन्सी विश्राम विश्राम पाछ फेर से बी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
8: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
9: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
8: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
9: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के 2 शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालू खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417। विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। एसएससी पुरूष प्रीमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल बा। मलेसियामा हुलक खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसिया 6 विकेट से पराजित गर्दै प्रतियोगितामा तेस्रो जित हासिल गरेको हो। यहाँ हुलक पहिलो खेलमा नेपाल बहराइन पराजित गरल रह। मलेसिया से नेपाल जित के 104 रन के सामान्य लक्ष्य ढेल रह। जवाफमा नेपाल 21.4 ओभरमा 4 विकेट गुमाइदी लक्ष्य पूरा गरल के हो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। आज कृष्ण जन्म अष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाईटी। थारू समुदाय अष्टम की पर्व मनाईटी। रसुआ बाढ़ी पार से बेपत्ता टीकापुर के 33 जन नागरिक अभी संपर्क मनाईने। बेपत्ता परिवार के आफंता हुकरन हाली खोजी करे पन्ना माग। कैलाली में जापानीज इंसेफेलाइटिस के संक्रमण पुष्टि दिलपा से सरसफाई है तीव्रता। स्थानीय तहाहुकरा स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर सरसफाई करती। उजमरा कुलवा के अध्यक्ष में मान बहादुर चौधरी निर्वाचित। लीटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै। और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुना सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि। राम राम।
10: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडीन बागवान
11: यही भड़ौ 20 गते शनिवार का दिन
12: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
10: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
12: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
11: डाक्टर आउने दिन यही भडौ 20 गते शनिबार
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 73 77 72।
7: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै इन्द्रेणी ज्वेलर्समा माइली तिलहरी छटके तिलहरी रामलीला झाला पिजडा झुम्का बाला एक आनामा एक जोडी चूरा बबी औठी बेरुवा औठी पेन्डल 1-4 आनासम्म कनौगेडी हारहरू चन्द्रमा मोटी चन्द्रमा र अर्डर अनुसार सुन चाँदीका गरगहना बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
6: इन्द्रेणी ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर कैलाली। संचालक रणबहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 9844-40-19।
14: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौ।
15: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
16: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
15: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
16: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
17: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584-89213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
18: जापानी इन्सेफलाइटिस रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अत्यन्त जरुरी सूचना।
19: जापानिज इन्सेफलाइटिस मस्तिष्कमा संक्रमण हुने लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने भाइरल रोग हो। यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ, तर धेरै जसो 15 वर्ष मुनिका बाल बालिकामा देखिन्छ।
20: यो भाइरसबाट संक्रमित हाँस कुखुरा जस्ता चरा चुरुङ्गी र सुँगुर बंगुर जस्ता जनावरहरूलाई लामखुट्टेले टोक्यो भने सो लामखुट्टे संक्रमित हुन्छ र ती संक्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा यो रोग मानिसमा लाग्दछ। तर यो रोग मानिसबाट मानिसमा भने सर्दैन। यो रोग विशेष गरी साउनदेखि कार्तिकसम्म देखिन्छ।
19: जापानिज इन्सेफलाइटिस रोगको लक्षण तथा चिन्हहरू:
20: बेसरी टाउको दुख्ने,
19: उच्च ज्वरो आउने, बेहोस हुने,
20: घाँटी अररो कडा हुने,
19: कम्पन हुने,
20: पक्षघात हुने
19: र समयमा उपचार नभएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ।
20: जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट बच्ने उपायहरू:
19: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्नु नै यस रोगबाट बस्ने प्रमुख उपाय हो।
20: हाँस कुखुरा सुँगुर बुङ्गुर जस्ता घर पालुवा चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई व्यवस्थित ढंगले घरदेखि टाढा खोरमा राखेर सुरक्षित तरिकाले पाल्ने गरौं।
19: घर बाहिर निस्कदा खेतबारीमा काम गर्दा पुरा बाहुला भएको कपडा लगाऊ।
20: घरको झ्याल ढोकामा जाली राख्ने, पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टे वृद्धि हुने भएकोले घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुरी दिने गरौं।
19: लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलम प्रयोग गरौं।
20: सधैं झुल टाँगेर सुत्ने गरौं।
19: याद गर्नुहोस्, यो रोगबाट बस्नका लागि 12 महिनाको उमेरमा जेई खोप लगाउनु पर्छ। यदि यो खोप लिन छुटेको छ भने 5 वर्षको उमेरसम्म पनि जेई खोप लगाउनु पर्दछ।
21: स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली।
22: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

राम राम समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज खोल के बैठल सको रेडियो प्रेमी मैगर संग स्वागत के संगे अभिवादन करना चाहम मई चांद मोरी गोल अपने उपन के संगे पुगे संग रत्न जी ऑनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुर एफएम एप्स मार्फत हम पात्रो नेपाली पात्रो मनसुफे संसार के कोई भी कोनो से सको जाने संग संगे आती कार्यक्रम गोचानी हो हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म हम सबको जाने संग संगे रठी आवाज से संग संगे हुई पुगलाती लाइन खुला बावे सुने 91.5 FM के दागर खुला बावे भावना रुचि सुने ना कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चिन जान कर सकन रेडियो मार्फत संग्रह बने ओ बनाई सकन कार्यक्रम गोचाली अपन अपन भावना और रुचि बताई पन्न के अपन रानी बानी मेल खैना संग्रह के संगे भावनात्मक संबंध जोड़ना जो मन परल संग्रह के चाहे आदेवी मई का जानकारी करना चाहम अपने के संगे और संग्रह के अभी के समय में कहा करती आती जे निंगती घूमती आती फुर्सत के समय में आती काम धंधा में लागल बाटी की मजे हुई भी कुशल मंगल आराम हुई भी कना हमन लागत हो एक चोटी समय निकाल के होली सफे साथ है देख चाहे बिल्कुल ना भले भी यही कर अर्जी करना चाहूँ अपने हुकन के संगे ओ संग्रह के आज अष्टम की पर्व थारू सम्मत 2649 अष्टम की पर्व के ढेर ढेर ढेर शुभकामना देना चाहब अपने हुकन आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि अष्टम की पर्ले खुले कारण से अपने हुकरे अपन नाथ पर संग्रह घर को तैयार हुकन अष्टम की के शुभकामना देना जो मन पर थी यानी कि इच्छा बावई कले से अपने हुकरे आ देवी की मैं जानकारी करना चाहूँ अपने हुकन के संगे हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी हम एक गीत से

हजुर कार्यक्रम में फिर से स्वागत करना चाहब अपने हुकरन अपने हुकरे भर्खर रेडियो खोल के बैठल बाटी कल से सुनती बाटी समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज सुनती बाटी अनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुर एफएम एप्स मार्फत हमारा पाटो नेपाली पाटो मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सको जाने संगसंगी या वह ठाव से फिर अपन सहभागी जनाई सेगवी बिंती बा अपने हुकरन के संगे कार्यक्रम गोचाली हो हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म हम सबको जाने संगे उठी वास्ते संगसंगे बाटी हमरे सबको जाने लाइन खुल्ला पावे भावना रुचि सुनेन कार्यक्रम गोचाली अपन अपन रानी बानी मेल खाना संगठन के संगे चिंजन हुईना जो अपने मन परठ कले से लौरा लौंडी चाहे कोई संगठन के फैर नुकरे आ देगी मई का जानकारी करना चाहब अपने के संगे ओ अष्टिम की पर्व के उपलक्ष्य में शुभकामना देना इच्छा व रुचि व मन व कले से फिर अपने जरूर अपन नाटक संघर के घर को त्यार शुभकामना थे देह से भी आस्था और संस्कृति के एक प्रतीक अष्टम की पर्व के उपलक्ष्य में ढेर शुभकामना फिर देना चाहब अपने हुकन के संगे लाइन खुला भाई 91.5 61.55 के डगर खुला भाई सत्कार झटकार घाम के संग संगे अपने के काम धंधा में लागल बाटी अष्टम की के तैयारी में बाटी अपने के साइड तमाम तमाम तमाम साइड गांव घर के संगे अपन जहां अपन पाइक पर न फैल फछवार घर या चाहिए सामुदायिक घर रहल ठाव में चाहे अपने के साइड तैयारी में जुटल हुई और जाके थारू चित्र अष्टम की के अष्टम की टिकना चित्र फेपने के साइड चित्रण करते हुए का ना हमन लागत लाइन खुला बावे अपने आई सेठी सुने 91.5 61.55 के अगर खुला बावे भावना रुचि सुने ना कार्यक्रम गोचाली तमारे ई कार्यक्रम अपने प्रण के लग्न हो हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म हमने सब जाने संग संगे रठी वास संग संगे बाटी अठे पर हमने फिर से एक गीत जोड़ी गीत के बाद से हमने फिर से बाटी लाइन खुला बा

0: हजुर कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने हुक्रन लाइन खुल्ला भाई शून्य 91.5 102.55 केटा घर खुल्ला भाई भावना रुचि सुनेन कार्यक्रम गोचाली यो कार्यक्रम अपने हुक्रन के लग हो गई तपाईँहरूले अपने उक्ति अपन सहभागी जनाइसकेको थिए लौरा लौली चाहिँ कोही सँगै उक्ति आइसकेको थिए अपन भावना रुचि सुनाइसकेको थिए या चाहिँ अष्टिम कि केही उपलक्ष्यमा अपन आपसँग हुक्रन जो शुभकामना देनास जो मन भएकोले शिक्षक मुकाइसकेको थियो मेगा जानकारी गर्न चाहन हुनुको सँगै छटकार झटकार घाम गर्ने भावेदेखि समयमै निम्ति घुम्ती अति फुर्सदको समय आफ्नो आफ्नो काम धन्दामा लागल हि अस्तिम कि व्रत रहुय व्रतालु सम्झके चाहिँ सम्झके तयारी साइड अपने हुँदै गर्थ्यो हि सम्झ जोन जो अपने उपरे अस्तिम की टिकना ठाउँ के अपने उपरे बिल्कुलै तम तयारी में हेवी गना हम लागत लाइन खुला भाई कोई संगरे टेलीफोन लाइन में जुड़ा लाटे गना संकेत मिलल भाव कहाँ से कौन संगत हुई नहीं लाइन टाइपी गले से वहाँ है एकदमै मिठास गफ हुई ये मई का जानकारी करना चाहम कोई संगरे लाइन में बताए हजुर राम राम हजुर राम राम
1: राम राम दादा
0: कहाँ से के कर बोल
1: बर्दिया
0: राजापुर से सुशांत चौधरी हो
1: सुशांत चौधरी
0: मजै बाटी हमरे
1: मजै राख पढाका
0: अस्तिम की पर्व के ढेर से ढेर शुभकामना बा
1: थैंक यू सो मच फॉर पढाका
0: अपने उकरन के गांव ठा में कतर चहल पहल बा अस्तिम जी के
1: चहल पहल मनाइना मनाई मनाई की बाटा कह पहल दादा
0: अपने के गांव में चाहे सामुदायिक घर हुई या अथवा एक
1: मनाई तो
0: हजुर
1: मनाई तो पड़ा
0: मनाईना तरखर में बाटी ढेर खुशी लागल सुशांत जी भावना रुचि सुनाई सकते
1: मैं माया करना अपन से भाई मैंने आदर सम्मान करना धूमपान मध्यम से दूर रहना ज्यादा भेदभाव नहीं करना फुटबल वॉलीबॉल खेलना संग्रह बनना कह पड़ा
0: अपने के भावना रुचि कोनो संघर्ष अपन मन पर थी एकदम सहज से कैसे के भेटाई सक दे
1: कौन पे नंबर दादा 9814551150 9814551150 राजापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 सुशांत चौधरी
0: आई ठर थे संपर्क नंबर में अपने भेटाई सक जाए
1: हजूर दादा
0: अस्तिम की के उपलक्ष्य में अपन नाटक संग रेकन शुभ कामना रह सकती
1: है एकनिक दीदी है अब न समझ तो कह पा रहा है
0: नाबिक लग विदा है
1: राम राम
0: राम राम सुशांत जी रही राजापुर टीम के संग रहे थे धन्यवाद साहब सहभागी के लग वहाँ है यदि वहाँ के भावना रुचि अपने जन मन पर थी कल से वहाँ से संग्रह बनना जो इच्छुक रहा संग्रहों के चाहिए सम्पर्क नम्बर सहयोग आठ 9814551185 नम्बरमा एकदमै सहजसे पाइसकेको थिए राजापुर नगरपालिका 3 सुशान्त चौधरी है ठर ठेगानमा एकदमै सहजसे उहाँ भेटाइसकेको थिए नाम आफ्नो मैगा जानकारी गर्न चाहन् अबके पालामा आफ्नो

0: हजुरकालका म फेर स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यहाँ गीत एकदमै एकदमै एकदमै सायद अपने सहन लागल है। अबके समयमा अपने व्रत बैठल सङ्घहरूको चाहिँ अपने चित्र बनाइन काममा सायद अपने लागल है। पाँच पाण्डव भगवानको चित्र, कृष्ण भगवानको चित्र, वनस्पति वस्तुके जीव जन्तुको चित्र बनाइन चलन भावै वस्तुके चाहिँ अपने के संध्या के समय में व्रत आलू के जो अस्तिम की टिकना ठाव जहां बनेने थे वहां उठाव में चाहे अस्तिम की टीके जैना अस्तिम की टीके बेर थे गीत गैना चलन भावई अस्तिम की संध्या दिन बुरुआ जुन चाहे टिकना चलन भावई टिक के चाहे अपने के संगे पूजा संगे लैगिल फल फूल भेटी रहल फल फूल लैजिन जो चलन भावै केरा हुइल जाके चाहिँ खीरा हुइल यी चिज चाहिँ लैजिथे उसके रात के चाहिँ अस्तिम की जगन जो गीत भावै गीत एकदमै अपनोके तमाम गाउँ घरके पुर्खा पुरानो होके गुनगुनै थे। कोही सँगै लाइन नआटेकन संगीत मिलल भावै कहाँ से कौन सँगै थे। हजुर राम राम। हजुर राम राम। हजुर राम राम। हेलो
1: हेलो। हजुर राम राम।
0: हजुर राम राम। कहाँ से के कर बोल सुन ली हमरे।
1: अरे आवाज बड़ कम आए था सर मोबाइल में बहुत कम।
0: कहाँ से के कर बोल सुन ली हजुर हमरे।
1: अरे टीकापुर से बोला तो सीताराम चौधरी।
0: हो सीताराम जी का बा हाल खबर।
1: बस बढ़े बा आवाज बढ़ाई कहीं महा कम आए था।
0: यहाँ तो अपने बोल रहे एकदमै टाई टाई आइटा होइजे बोले हस सीताराम जी।
1: हजुर।
0: अस्तिम की पर्व के ढेर ढेर ढेर शुभकामना बा।
1: हजुर हजुर अपने शुभकामना अस्तिम के।
0: कतरा सीतर बा सीताराम जी के लहंग।
1: बड़े आवाज कम आइटा सर मोबाइल में।
0: सीताराम जी के लहंग कतरा सीतर बा वही।
1: हजुर।
0: सीताराम जी के लहंग कत्र सितर सितर सितर मौसम बाबू।
1: हे आज तो खास घाम है सितरे बा।
0: सितरे बाबू।
1: हजुर।
0: बिल्कुल सीताराम जी।
1: हजुर।
0: शुरू करे सक्छी भावना रुचि।
1: भला भला का बड़ा ढेव दिन मा छाइला तु यछमा सम बच छमा महा ढेव दिन मा दी रेडियो सुना छही ता सकुन कहे पर लात कृष्णाष्टमी आज कृष्णाष्टमी कहे पड़ा रात सकून अपन सीताराम फिर सबसे सकून समझकू और सकू धन अपने से समझकू कहे पड़ा सब रही।
0: सीताराम जी।
1: हजुर।
0: भावना रुचि नहीं सुनई भी।
1: भावना रुचि तो आपका आप सबसे तो भावना रुचि का ना फिर खुद मजा लगा फुटबॉल हुई और जाके क्रिकेट वॉलीबॉल चाहे जो खेल पर मजा लागत खेतों के मैं ये हो मोटो।
0: हाँ बिल्कुल सीताराम जी।
1: हजुर।
0: अब एक लग हमरे विदा है।
1: हजुर।
0: राम राम।
1: राम राम। हजुर राम राम।
0: सीताराम जी रहे टीकापुर ब्लॉक नंबर 14 से रहे। ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहाँ है। अपन नाटक संग्रह करण अस्तिम की के उपलक्ष्य में शुभकामना दई के फे गई नहीं ढेर खुशी लागल वहाँ फे एकदम रेडियो प्रेमी संग्रह है साथ देहुया देती रहुया संग्रह है। ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहाँ है। निर्धारित समय फे बिल्कुल डगर कटी लागल अवस्था में हमरे या पुगलाटी संकेत मिलल बाबी तो जाके संग्रह के टमने के बाद फिर मैं अब जोड़ना चाहम जो संजय के टिक के चाहे अपन अपन घर ऐठाई व्रत आलू के तो जाके फिर संजय के समय में फरहरा करते वो जाके कुछ खाईना कुछ चाहे अग्रासन के रूप में निकलना करते बिहान उठ के चाहे फिर से टीके जौन ठाव में अस्तिम की टिक छाई और ठाव में जाके अपन पूजा सामग्री लेके जो लगे के लडिये में जो पोहाई ठाई पोहा के आके जाके चाहे फिर से घर आके फरहरा करते जाके फरहरा कर करके निकारल चाहे सामान जौन रहत फल फूल रह भात रह चाहे अपन चेली बेटी होकरन फुआ होकरन देना जो चलन बाबू हमारी अस्तिम की पर्व के ढेर ढेर ढेर शुभकामना देना चाहब रेडियो प्रेमी मैगर संघ अस्तिम की पर्व के उपलक्ष्य में ढेर शुभकामना देना चाहब ओत्र पटेल संघ रेडियो के साथ डेली रेडियो प्रेमी मैगर संघ के ढेर धन्यवाद मोरिक बोल अपने रेडियो सेटसम पुगा देले कोर से संघ रे रत्नाजी है फिर ढेर धन्यवाद सहभागी जनीय संघ रखन फिर ढेर धन्यवाद देती एक सौ गीत छोटी में कार्यक्रम संचालक चांद के पार एक हफ्ता के लग बीडा हुई टू अपने इनके अस्टिम की शुभ रहे राम राम।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो बाबा फिर ओष्ट बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रत गई झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस्या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अर्को लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
4: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
6: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणाली द्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
5: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 98 68 55 10 00।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा के उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी।

0: Naka bular kaka piritin, naka pencil eritin, na jhala fatalitin, kayek anal jhala just katas batin. Ye buruk dhang kabu pasal chankana jhala ni anasya katwini.
1: Lialia, mai abhi hi jaibu, rat gaya jhala udhog mein. रत गैया झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: न्यू असम जालपडेवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चौक टीकापुर कैलाली संचालक दुर्ब सुनार।
1: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका टेक 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमर गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
0: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टीकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्डे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
2: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी ये नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कान लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जाई कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261।

आना कई बीरवर देहन सिर जाय आना कई बीरवर देहन सिर जाय के कर देवा तियर लेहने फूलबा

नागारी के बीच रे सरो महाला उठा महाला काया गेरे सरी पियारे खोदाईला कुइया काई रे तीरे जगता बने कुइ

गाऊ के पाछी मेरे दरू सगरा खोड़ा सगरा कढ़ी किरधी के बन बगिया लगाए लो सगरा कढ़ी किरधी के नियाबस सगरा कढ़ी किरधी के बनिया बसा

0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सामुहिल ज्वेलर्समा सुनबाट निर्मित विभिन्न डिजाइनका गरगहनाहरू बनाइन्छ। जस्तै कानीहार, हार, छटके तिलहरी, माइले तिलहरी, नौगेरी, मंगल सूत्र, बाला, औठी, चाप्की, झुम्का अर्डर गरे अनुसार खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सामुहिल ज्वेलर्स, बलबर्दा चोक, टिकापुर, कैलाली। संचालक सामुहिल सुनार।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046 77417।
0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
5: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
6: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
5: अब किन टाढा जानु, सिर्चाना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
6: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
5: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
6: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
5: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
6: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
6: सिर्जना सुन चाँदी पसल, बलभद्र चोक, नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा। सञ्चालक रूपलाल सुनार। सम्पर्क नम्बर 9800095443।
8: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
9: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
10: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
9: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
10: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
11: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।
12: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सञ्जेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनाउका अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व थारू समुदाय अष्टमकी पर्व मनाइती टीकापुर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी विशेष पूजा आज संध्या शांति दीप प्रज्वलन कैजिना सुरूंग से उद्धार करगिलक शाह व महर्जन के उपचार हुई थी बाड़ी में परिवार बेपत्ता हुलक टीकापुर के नागरिक के घर में खाना पाकर तर घैची मन खाना निजैत दारचूला पहिरो ठुनगिलक लड्डा बह लागल 10 परिवार सुरक्षित ठाव मन सार्गिल व सुदूरपश्चिम में आज गौरा पर्व मना जाते वैदिक सनातन धर्मावलम्बी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान कृष्ण के पूजा आराधना कर्क श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइती रहलबाट ज्ञान योग्य कर्म योग्य भक्ति योग्य के प्रणेता भगवान कृष्ण के जन्म द्वापर युग मन भाद्र कृष्ण अष्टमी के मध्यरात में हुईलक वर्षे आज के दिन हन कृष्ण जन्माष्टमी व राठन मोहरात्रि कैजैठ यी दिन देशभरकी कृष्ण मन्दिर मन भगवान कृष्ण के पूजा आराधना प्रवचन भजन कीर्तन कर्नाकीसँग विशेष कैकन महिला पुरूष व्रत बैठक रातभर जागराम बैठना प्रचलन रहलबा अन्य अत्याचार व राक्षसी प्रवृत्ति से सक्कु मनिनके रक्षा कर भगवान विष्णु के आठौं अवतार के रूप में जन्मन हुईल कृष्ण आजीवन सत्य के पक्ष में रहकर सत्कर्म के लाख मानव समुदाय प्रेरित कर रहा कुछ क्षेत्र मन कौरवसंग के लड़ाई में संलग्न पांडव मध्य के अर्जुन हन उपदेश देना क्रम मन स्वयं कृष्ण के मुखार बिंदु से व्यक्त श्रीमद भागवत गीता पवित्र ग्रंथ मानजैत छोटकरी में गीता नाम समेत चिंजिना यी ग्रंथ विश्व में सकुन से धीर भाषा मन अनुवाद हुईलक विश्वास कैजैत बाल्यकाल थे से आपन विचित्र लीला देखाइल हुईलक कृष्ण पुतना कंस जरासंध ओ शिशुपाल जसिन दानवी प्रवृत्ति के संहार करगिल हुईलक पौराणिक ग्रंथ में उल्लेख बा थारू समुदाय मन फे सामूहिक रूप मन अस्तिमकी पर्व मना जाती बा थारू समुदाय के महिला सामूहिक रूप मन अस्तिमकी पर्व मनाई अस्तिमकी के आगक दिन दरखाइक लगी मच्छी मना डोनी टपरीक लगी बनो मन पट्याटूर जिना रात का व्रत बैठना व्रतालुंग सामूहिक रूप मन एक ठाव बैठकन दरखैना चलन रह व्रत बैठक दिन व्रत आलू लौरा व लौरा घर बहरीम रहल डेहरी मन अष्टमकी के डोखत्वा चित्र कोर्नाकठ चित्र मन पांच पांडव रैनी कछुआ परेवा बरमुरुआ गंगटा सर्प हर ज्वाटल गोरु के कुकुर लगायत के चित्र कोठ व्रतालू महिलाओं का बिहान ठेसे नई व्रत के पाछक दिन फरहार के लागी तरकारी के जोह करना तैयारी करना संध्या कन सक्कु जन सिंगार पटार कैक सामूहिक रूप में अस्तिमकी मनैना बनैलक घर मन अस्तिमकी टिक जैना कठ अस्तिमकी टिकन घर फिटा हुई बाछ व्रतालू हुक्र एक ठाव में बैठक फलफूल केरा स्याउ लगायत के खैना चीज आपन दादू भैयन के लागी छुट्याकन खैना चलन रहलबा खास्याकल बाछ फेर गांव महिलाओं का सामूहिक रूप मन अस्तिमकी टिकलक घर मन गीत गाइजै अस्तिमकी के गीत फे फरक फरक समय अनुसार गाजैत अस्तिमकी टिकना बेला रात के समय में गैना बिहान फेर व्रत के और दिन अस्तिमकी असराई अर्थात सेलाई जाई बेला गैना गीत रहलबा रातभर गीत गाकन और दिन बिहानकन ढ्यूर किसिम के परिकार पकाक व्रतालू महिलाओं को फेर सामूहिक रूप में अस्तिमकी टिकन लगभग लड्डिया व खुलुआ मन अस्तिमकी असराइजी वाकर पाछ घर फिर्ता होकन बिहान का पकैलक ढ्यूर किसिम के परिकार आपन दादू भयन के लागी छुट्टिया का खैठ व खास्याकल पाछ अग्रासन दिए जैना चलन फेर रहलबा थारू समुदाय में पाछक समय यी अस्तिमकी मनेना चलन घटी गेलबा यी एकठो संस्कृति हुईल कोर से यी न संरक्षण करना आवश्यक रहलबा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछ नेनीबाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
2: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
2: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
2: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
2: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगा आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423159।
0: टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 द्वारा वडावासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
1: वडा नम्बर 1 मा कुनै प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वडा कार्यालयमा अनिवार्य व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गरौं। पशु चौपाया छाड नछोडी र सड़क पेटी छेउछाउमा नबाँधौ। सार्वजनिक स्थानमा माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री जथाभावी नराखौं। खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसावट नगरौं। ढल वा सड़क मिचेर व्यवसाय नगरौं। घर वा पसलबाट निस्किएको फोहोर मैला जथाभावी नफालौं।
0: एक घर एक बिरुवा रोपौं। सबै प्रकारका करहरू समयमा तिरी नागरिकको दायित्व पूरा गरौं। टिकापुर नगरपालिका हाम्रो हो, यसलाई सफा सुन्दर बनाउन आफ्नो ठाउँबाट सबै लागौं। हाम्रा बाल बालिकाहरू लागु औषध दुर्व्यसनीमा फसिरहेका छन्, त्यस विषयमा अभिभावकहरू सचेत बनाऊ। यदि वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुझाव र गुनासो भएमा वडा कार्यालयको फोन नम्बर 0915600577 वा वडा अध्यक्षको फोन नम्बर 9844404598 मा सम्पर्क गरौं।
1: टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालय टिकापुर कैलाली।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा टिकापुर स्थित राधा कृष्ण मन्दिर टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 9 मा आज जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रम हुल बा। मन्दिरमा बिहान 5 बजे से पूजा आजा शुरू करगिलखो। मन्दिरमा दिनक भजन कीर्तन प्रवचन सत्संग लगायतके कार्यक्रम आयोजना हुल बा। मन्दिरमा न सन्ध्या 7 बजे सवा लाख बत्ती बार्कन शान्ति दीप प्रज्वलन समेत गर्जैना हुल्बा। मन्दिरमा आयोजित विशेष पूजा आयोजक समिति के संयोजक उपेन्द्र खनाल मन्दिरमा 3 वर्ष इहार जन्माष्टमी मन गतिविधि बहलको यह वर्ष पूजा आर्जना करलक पूजा आजा करना के संख्या बहरलक बटुलबाट। पूर्व नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल विगतमा नगर परिक्रमा कैकन शोभा यात्रा कर्कन जन्माष्टमी मनैना करगिलकमा यह वर्ष देशमा बाढ़ी से शोकमा रहलक मोर्से शान्ति दीप सहित कार्यक्रम करगिलक बटुलबाट। राधाकृष्ण मन्दिरमा बिहानके समयमा योग साधना समेत हुना कलक योग प्रशिक्षक कृष्ण बुढा बटुलबाट। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति शाखा आश्रम टीकापुर विभिन्न कार्यक्रम कर्क श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनैलबा। जन्माष्टमी पर्व के अवसरमा रक्तदान महान सत्संग नाचगान तथा भण्डारण लगाएर जन्माष्टमी पर्व मनैलक मानव धर्म सेवा समिति शाखा आश्रम टीकापुरकी युवा संगठन संयोजक दीपक धिताल जानकारी देलबाट। कैलाली टीकापुरके बाढ़ी पीड़ित परिवार खाना नै खैलक धीर दिन होस्याकल। रसुवामा भडौं 10 गते बाढ़ी पाछा आफन्त बेपत्ता हुइलक खबर सुनलक टीकापुरके बाढ़ी प्रभावित परिवारके सदस्य। रातके नीन दिनके भोक थाहा पाई निस्याकल हुइट। अधिकांश घरमा न खाना पाकल नि हो। कलसे कतराजन छिमेकी देलक खाना फे खैठ तर खैनाफे मन्नी लागल हो। बाढ़ी प्रभावित परिवार के नागरिक आफन्त के खबर सुन पैना आशा मन मोबाइल हेर्टी रहल बाट। दिनभर आँखी मन आस बहत तर रातपरत निराशा लेकन सतायत। टीकापुर पाँच मौरन्या के श्रीकृष्ण चौधरी 63 वर्षीय बाबा पहिलचो रसुआ मन काम के लागि गैल बाटिन। तीन थो छाई एक थो छावा रहलक रसुआ बाढ़ी पाछा सम्पर्क विहीन हुईल। घरमा न छाई छावा नटिन्या बैठकन बेलौना कटी रहल बाट। उहाँके छाई रामकुमारी सास निविलसे फेर लास पाजाइटकी कना आस आमिन फेर रहलक बटुटी। दुःख के समयमा कोही निएलक बटुइल बाट। उहाँ चितवनसम्म पुग्क सक्कु अस्पतालमा खोजी कर्क समेत फिर्ता हुई बाट। ओह ओडा के कमल बहादुर चौधरी के घर में फे अस्त पीड़ाबा। आपना ट्रैक्टर चलेना कमल बहादुर संहरिया रसुआ जाई लागल देखल पाछा बर्खा में कुश कमाई करी कैकन उहर लग्ल। रसुआ हेरैलक खबर सुनलक गर्भवती पटोयान एकचो गाह्रो हुई पाछा नेपालगंजमा शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी कराई परल। सात महीनामा नै बच्चा जन्मलक वर्षे बच्चा सघन उपचार कक्षमा धैगिल बा। कमल बहादुर के छावा दुर्जे चौधरी एक उहर बाबा बेपट्टा हुइलक और उहर गोसिन्या व बच्चा अस्पतालमा महँगो उपचार करैती रलक वर्षे पीड़ा हुइलक बटुइल बाट। ओह ओडा के चन्द्रबहादुर थारूफे बेपट्टा हुइल बाट। भारतमा कमाई गैलक उहाँके छाई छावा घर घुम्टी बाट। घरमा न एकल रहलक उहाँके श्रीमती पंछी चौधरी कुश स्वाच स्याकल निमित। छाई छावा वो श्रीमान मिल्क घर बनैना बनाएक लागि जग डारल बाट। सक्कुज मिल्कन पक्की घर बनैना योजना रहेन। पहिलचो काम मन घर से निकलक श्रीमान के बारी पाछ अट्टो पट्टो निहिल पाछ उहाँ फे पीरामन बाट। टीकापुर नगरपालिका से रसुआ के हाइड्रो पावर में काम के लागि गैलक 34 जनसम्पर्क विहीन हुईलक टीकापुर नगरपालिका के तथ्यांक मा। बाढ़ी पीड़ित के खोजी के लाग पालिका पहल करती रह बा। पालिका असीन बेला मन मानसिक रूप मन विक्षिप्त हुई सेक्ठा कैक मनोसामाजिक सेवा समेत देती रहल बा। याकरसँग नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति के बैठक से भोटेकोशी बाढ़ीमा फसल हुकन के खोजी केलाग गृह मंत्रालय सहित सरोकारवाला हुकन पत्राचार कना जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में खोजी केलाग पहल करना निर्णय हुईलक कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगाजी पटुलबाट। त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजना की सुरूंग भीतर से जीवित उद्धार करगिलक संजय शाह व कबीर महर्जन के उपचार हुईतिरलक नेपाली सेना से जनागिल बा। महर्जन एयर डायनेस्टिक के विमान से काठमाण्डौ लैगिलक सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेत बटुलबाट। शाह के उपचार नुवाकोट स्थित त्रिशुली अस्पताल में हुईतिरलक प्रवक्ता बस्नेत जानकारी देलबाट। उद्धार करगिलक नेपाल विद्युत प्राधिकरण के दुनूजन कर्मचारी के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहलक प्राधिकरण से जनागिल बा। हाल उहाँ हुकन के छाउनी स्थित वीरेन्द्र अस्पताल के सघन उपचार कक्ष आईसीयू मन उपचार हुईतिरहल बा। दुनूजन के सीटी स्कैन सामान्य रहलक प्राधिकरण जानकारी देलबा। कोइलाडी 8 सप्तरी थाई ठेगाना हुईलक 30 वर्षीय शाह ऊपर के त्रिशुली 3A मन ओ काठमाण्डौ के बालकुमारी 3 घर हुईलक 45 वर्षीय महर्जन जलविद्युत स्वचालन परियोजना मन कार्यरत रह। खोज खबरमा फेरफे विश्राम पछैनी निबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
5: सुन्नुहोस् न, यसपालि तिजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
6: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
5: अब किन टाढा जानु, सिर्चाना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
6: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
5: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
6: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
5: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
6: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
6: सिर्जना सुन चाँदी पसल, बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
7: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जै भो? पाँच छ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल।
8: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू, मिलबो मिलबो नि करत, का कैन हो का?
7: मिस्तरान बर्जनाउ कन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैला बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
9: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848541436।
11: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्युरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
12: यही भदौ 20 गते शनिबारका दिन
13: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
11: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
13: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
12: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार।
14: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। दार्चुलाके अपिहिम्याल गाउँपालिका एक भण्डार स्थित चौनाली लड्डेमा पहिरो खसबेर कुश घर खेटवा बगाएको लैगिल बा। लद्या थुनगिल पाछ उत्पन्न जोखिममा मध्यनजर गर्दै पहिरो खसलक टरके ठाउँमा न रहलक 10 परिवार हन सुरक्षित ठाउँमा सार्गिलक अपिहिमाल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष भक्त सिंह ठेकरे बोहरा जानकारी दिलबाट। अध्यक्ष बोहराकी अनुसार आब ठुनगिलक लद्या पुनः बह लागल बा, तर पहिरो खसना क्रम आमिन नै रोकलक उहर्से लद्या आसपासकै क्षेत्रमा जोखिम कायम रहल बा। कुश घर खेटवा बगाकले गिल बा, पहिरो गैलक तरके ठाउँके 10 थो परिवार सुरक्षित ठाउँमा सार्गिल बा। लद्या तटीय क्षेत्रमा न जोखिम मन रहलक सक्कु नागरिक हुकन जानकारी कराशेकलक बोहरा बटुइलबाट। उहाँकै अनुसार कुछ समय थुनगिलक लद्या अब बह लागल पाछ उपरसे पहिरो खसनाक्रम जारी रहलक उहाँसे सम्भावित जोखिम हुन लेक गाउँपालिका वा स्थानीय प्रशासन सतर्क अवस्थामा न रहल बा। अध्यक्ष बोहरा हालसम्म घटनासे मानवीय क्षति निहुइलक स्पष्ट पलबाट, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहलक नागरिक सुरक्षित रह वा आवश्यक सावधानी अप्नाई जानकारी कराशेकलक उहाँ बटुइलबाट। लद्या ठुनगिल पाछ अचानक पानीके बहाव बढ सेक्ना व फेर पहिरो खस सेक्ना सम्भावना हुन मध्य नजर कर्ती तटीय क्षेत्रमा रहलक नागरिक सतर्क रह आग्रह करगिल्बा। गाउँपालिका सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित निकायसे समन्वय गरक सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण केलाक आवश्यक तयारी कर्तिरलक जनाइलबा। सुदूरपश्चिम मना आज गौरा पर्व के मुख्य दिन अठवाली हर्षो उल्लास के साथ मना जाती बा। अठवाली अर्थात अस्थ के दिन गौरा पर्व के मुख्य दिन हो। आज के दिन गौरा हुईना ठाव में गौरा महेश्वर स्थापना कर्स्याकल्पा छ। वर्तालु महिला अठवाली गायन संग बिरुडासे गौरा के पूर्वा पूजा अर्चना करना कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिक सात के वर्तालु रत्नादेवी भट्ट बटुला वहां के अनुसार अठवाली मन गौरा के जन्म थेसे विवाह पाछ समय के कथा ऐना वो इहे मन गौरा के जीवन के विभिन्न घटना के वर्णन कैगिलवा। सुदूरपश्चिम के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट परदेश मना हालसम हुईलक जोखिम के मध्यनजर कर्क नीति निर्माण करना बटविला मुख्यमंत्री हुईल पाछ पहिलचो गृह जिला डडेलधुरा पुगलक मुख्यमंत्री भट्ट बिहान नेपाल पत्रकार महासंघ डडेलधुरा के आयोजना कलक पत्रकार सम्मेलन में असिन बटविलक हुई। यह समाचार के संग खोज खबर और अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व थारू समुदाय के महिला अस्तिम की पर्व मनाईटी। टीकापुर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी विशेष पूजा आज संध्या कन शांति दीप प्रज्वलन करना। सुरूंग से उद्धार कर गिलक शाह व महर्जन के उपचार हुई थी। बाढ़ी मन परिवार बेपट्टा हुईलक टीकापुर के नागरिक का घर मन खाना पाकत तर घ्याची मन खाना निछिरत। दार चूला पहिरो ठुन गिलक लड्डिया फेर बह लागल दस परिवार सुरक्षित ठाव मन सार्गिल व सुदूरपश्चिम मन आज गौरा पर्व मना जैती। लिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार छ बजे नेपाली में खोज खबर सुन सकी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद देती। मैं गीता फे विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीका पेरे फेम सुनती रवि राम राम।

0: आई बुढल्ला सुन्छौ कि नै वा नन्दी घोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाका आन्ला बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आरती ब्युटी एण्ड कस्मेटिकमा तीजको अवसरमा सौन्दर्य र श्रृंगारको लागि विभिन्न ब्रान्डका कस्मेटिक सामग्री पाइनुका साथै थारू गरगहना पाइन्छ र ब्युटी पार्लरको सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
3: सञ्चालक आरती चौधरी सम्पर्क नम्बर 98624 70483

0: आजभोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौ र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइ, उहाँ आफन अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइगो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकलमे अब छाला सम्बन्धी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डाक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगारके परेशान रहूं, तब तुमै अभी ही जाइम।
1: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत, का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जनाऊ का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई, कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
4: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
5: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
4: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
5: ईसीजी सेवा,
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
4: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423359। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीनबाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-38 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला टीकापुर नगरपालिका को आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर